0: जी हाँ, ये राखी का गाना बहुत ही सुंदर मीठा गाना था। ये बहन और भाई के अटूट रिश्ते को समझा की इम्पोर्टेंस देता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है। और जैसे कल रात को केबीसी में अमित जी बोल रहे थे, जो राखी जो एक बहन अपने भाई के रिश्त पे बांधती है, उसका जो है सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि वो नॉट ओनली फिजिकल प्रोटेक्शन बट यू नो मेंटल स्ट्रेंथ टू हेल्प इन डिफिकल्ट टाइम्स इन लाइफ। सो इट्स ए वेरी ओल्ड फेस्टिवल एंड इफ यू लुक एट माइथोलॉजी देखें अगर आप इंडिया की, तो उसमें तो जो सबसे पहले बोलते हैं जो इंद्र भगवान ने को उनकी जो राखी बांधी, उन्होंने अपने पति को, उनकी पत्नी का नाम था इंद्राणी, उन्होंने बांधी थी। दैट्स द फर्स्ट एवर एज पर आवर स्क्रिप्चर्स। सो वी वोंट टॉक मोर अबाउट इट। एंड मनीषा, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट?
1: या सो या राखी इज अ रियली इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इन फॉर ऑल इंडियंस एंड जस्ट सेलिब्रेट्स एंड reinforces the bond between a brother and sister, and it's a fun festival. Everybody gets dressed up, either they, when they're young they're living in the same house, but when they get older they either visit their brother or the brother visits the sister, and so on and so forth. There's exchange of gifts, of course, and exchange of mithai and sweets. So it's a very sweet and fun Indian festival.
0: You know, few in India back in those days, few days before everything gets hectic, राखी मिलनी शुरू हो जाती है मिठाई की दुकान पे, मिठाई लोग प्लान करते हैं। अगर किसी का भाई बाहर रहता है तो उसको पहले हफ्ता दस दिन पहले राखी मिल जाए, हाँ टाइम से मिल जाए, बाद में मिले पहुंचेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सो यू नो दोज आर द स्वीट मेमोरीज ऑफ राखी। और फिर You see a lot of ladies traveling by bus on the Rakhi day early in the morning. Bhai ko jana hai, usko Rakhi bandhi hai. Then he has to go to work and all. Okay, let's.
1: So that's about Rakhi. So we today, listeners, we do have a full playlist, playlist which is made by me. But in addition, we will have your requests. So you could send in your requests and we will play them. So I'll start off with a request. This is a request from Beena Hotchandani. This is a request for Padma, Padma Bain, Padma Hiranandani, Padma Raichwad, as she's fondly called, is the original DJ of this show, Geetmala. And she started this show in the late 90s in this very station at WVKR. So, Beena would like to dedicate this song for Padma, and it's a nice prayer song from the movie Do Aankhein Baarah Haath.

0: जी हाँ, ये गाना लता जी ने अपनी आवाज़ दी थी, लिखा हुआ था भरत व्यास का, और इसका जो संगीत था, संगीत निर्देशक वसंत देसाई। ये बहुत ही प्यारा सा ऐसा गीत है जिसमें आप जो क्रिएटर है, जो उससे अपना यू नो पीपल इन ऑल फेथ्स एंड रिलीजन्स गिव इट टू यू नो वी आर योर पीपल टेक केयर ऑफ अस, सो इट्स वेरी सिंबॉलिक आई थिंक यूनिवर्सली आई वुड से।
1: Yeah, it's kind of a universal song. No matter what your faith is, you believe in one Malik or one Creator or one God. So beautiful choice, and thank you, Beena, for the request. The next song is a request coming from Aruna Jindal, and this is a song from the movie Hum. I think it's a 1990s movie, Amitabh Bachchan, 80s or 90s, and this is lot of singers. It's more of a chorus with Sudesh Bhosle, Mohammad Aziz, Udit Narayan and Alka Yagnik. So let's enjoy this song again, a nice collective kind of song of love and brotherhood. So let's enjoy this.
2: Bum chick chick bum, chick bum bum bum chick chick bum.

0: जी हाँ, ये बमचिक बम क्या मतलब है इसका मनीषा?
1: इट्स नॉट अ मतलब का वर्ड, इट्स जस्ट लाइक अ व्हाट डू यू कॉल, नॉट अ म्यूजिक थिंग,
0: राइट? इट्स अ स्लैंग, इट्स अ फ्रेज. जैसे इसका इसे गूगल बोलता है इट्स अ नॉनसेंस रिदमिक कोरस फ्रेज इन म्यूजिक डांसिंग एंड लाइट हार्टेड स्लैंग. जैसे अभी एक टीवी पे प्रोग्राम देख रहे थे ना, दिल्ली 6 के जो गाने हैं उस पर लिखा था एक, उसने प्रसून जोशी ने बोल रहा था जो. सो इट्स लाइक सिमिलर फ्रेज. एंड आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स टू अनाउंस. फर्स्टली आवर द प्रोग्राम विच वॉज बिफोर अस पोलका, दे आर वेरी पंक्चुअल, वी ऑलवेज अप्रिशिएट. राइट एट 11:59 दे से गुड बाय एंड हैंड ओवर द स्टूडियो टू अस. एंड आज के प्रोग्राम की लिस्ट क्या है मनीष, क्या थीम है आज?
1: तो या आई मीन इट्स समटाइम्स देयर इज नॉट अ रियल थीम, समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ थीम. सो टुडे आई चोज सॉन्ग्स फ्रॉम मूवीज विच वर रिलीज्ड इन 1990. सो लिसनर्स, दैट्स माय प्लेलिस्ट फॉर टुडे. 1990 वाज काइंड ऑफ अ पिवोटल ईयर, आई विल टेल यू दैट लेटर ऑन. But it was a good year, 1990. There were a lot of good Hindi movies released during that time. And the landscape of Hindi cinema was changing a little bit in the 1990s, because India was changing in the 1990s. There was that liberalization policy coming in, and people were getting more westernized, and there was the internet and cell phones. So 1990 was a good year. So let's hear this first song, which is from the 1990 movie Dil. And I think the 1990s kind of the actress who dominated the 1990s, and especially the year 1990, was Madhuri Dixit. So this is a song which is from the movie Dil. The actors are Aamir Khan and Madhuri Dixit, and they had very had great songs. We have played those songs before. This is one of those songs, and it's sung by Anuradha Podwal and Udit Narayan.
0: जैसे मनीषा तुमने क्या इंटरनेट का बोला ना, तो उसमें टिम बर्नर्स-ली लेड द foundation and the groundwork for the WWW at CERN in 1990. That's
1: when. Oh, I didn't know that.
0: Yeah,
1: that's
0: so that's
1: cool.
0: Very important. You know, that's how the world has changed forever.
1: Okay.
0: As AI is changing it.
1: So let's hear this song.

0: right. So that was Aamir Khan and Madhuri Dixit movie Dil. Listeners, if you're just joining in, it's 11:30. It's Saturday morning and you're tuned in to WVKR Independent Radio Station from Vassar College, Poughkeepsie, and you're listening to your favorite Bollywood program, Geetmala.
1: जी हाँ, 1990 एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल था. उस जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट दुनिया की न्यूज़ थी कि फरवरी यानी कि फरवरी 11, 1990 में नेल्सन मंडेला को 27 साल और

0: जी हाँ, ये गाना था थोड़ा फास्ट पेस, थोड़ा फुट टैपिंग वाला, लेकिन अच्छा था, पसंद आया।
1: हाँ, इतके काफी मतलब पोइट्री वाले शब्द नहीं थे, बट इट वॉज लाइक व्हाट वी कॉल अ चालू सॉन्ग,
0: लाइक बमचिक बमचिक।
1: या एग्जैक्टली, बट इट वॉज आई थिंक I didn't miss Kishore Kumar because Amit Kumar was singing just like Kishore Kumar.
0: Right, right. जी हाँ, अगर हमारे सुनने वाले श्रोतागण ये सोच रहे हों या आश्चर्य दे रहे हों, आश्चर्यचकित हों कि ये मनीषा और अरुण ने तो लास्ट वीक किया था बहनों के उस पे थीम पे प्रोग्राम, आज वापस कैसे आ गए ये? So just for FYI कि जिस RJ ने आज का शो करना था उनको कुछ लास्ट मिनट पे कैंसिल करना पड़ा, वो आ नहीं सकती थी, तो मनीषा ने बोला अच्छा आई विल स्टेप अप, मैं अपना ये विल कैरी ऑन द टॉर्च एंड डू ए लाइव शो। सो मनीषा ने 1990 के गाने चुने हैं एंड लेट्स सी अगला गाना कौन सा है।
1: अगला गाना फरमाइश है, सो या आई मेड दिस लिस्ट स्लाइटली लास्ट नाइट एंड the night before, but let's it's all good, it's for the love of music that we do it, and I hope all I'm sure our listeners appreciate listening to these songs. So listeners, this is again a request from Jane Auntie. This is from Ravi Auntie, who is a fond and loyal Geetmala listener, and I think this is a song from sung by Lata Mangeshkar and Hemant Kumar. ये फरमाइश है रवि जैन की और गाना है ए नीले गगन तले प्यार हम करें. I've not heard this song, रवि जी, but I think this is the song you are requesting. It's movie Badshah. So let's enjoy this request.

0: Very excellent choice, Raviji. Beautiful song. This is from, I looked up, 1954 movie, Badshah.
1: Yeah.
0: Black and white movie.
1: Next time I Jane Aunty se milunga na to puchunga, aap jab apne young age mein jo gaane sunte the, kahan sunte the, radio pe, aur kaun se theater mein jaake picture dekhte the, aapki jo pasand hai na gaano ki, बहुत ही सुरीली मीठी लो पिच वाले गाने होते हैं. आई रियली लाइक इट.
0: या रियली ग्रेट सॉन्ग्स, वेरी नाइस सॉन्ग, एंड आई एम श्योर आवर लिसनर्स एंजॉयड इट टू. एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम अ 1990s मूवी. दिस इज अ मूवी किशन कन्हैया. And as I was talking about 1990s, Aamir Khan, Madhuri Dixit were the reigning stars. And also Anil Kapoor. So this is from a movie, Kishan Kanhaiya, which is, the actor is Anil Kapoor.
1: And Kishan Kanhaiya ke naam se jo main zarur bolna chahunga, Draupadi ne Lord Kishan ke rakhi baandh ke got eternal protection. So that's a very important, बहुत ही महत्वाकांक्षी कहानी है हमारे लिए, बहुत ही important बात है.

0: हाँ जी, बरसात के ऊपर गाना था, इतनी बरसात यहाँ हो रही है, तो आई थॉट लेट्स हैव अ रेन सॉन्ग।
1: ये लेकिन ये गाना पहले सुना नहीं हुआ, और आज की जो आपकी जो सूची है ना, सूची यानी कि जो लिस्ट है, थोड़ी भिन्न तरह की है, यानी कि डिफरेंट टाइप की है। पता नहीं कैसे आपने चुने हैं इस बार के लिए गाने।
0: नहीं, लिस्ट तो कई तरह की हो सकती है, लिस्ट बनानी आसान थोड़ी है। तो मैंने 1990 चुना है। 1990 वॉज एन इम्पोर्टेंट ईयर इन आर लाइफ, इफ यू रिमेम्बर।
1: वॉज इट?
0: या वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। बिफोर दैट लेट्स प्ले अ सॉन्ग। दिस इज अनदर सॉन्ग विच वुड हैव बीन पद्मास चॉइस हैड शी कॉल्ड एंड रिक्वेस्टेड, बट दिस आई एम प्लेइंग ऑन बिहाफ ऑफ पद्मा। पद्मा लव्स एसपी बालसुब्रमण्यम। So this is a song from Padma Raichwad to all our listeners. This is again a 1990s movie, Jamai Raja, and sung by S.P. Balasubramaniam, and along with him is S. Janaki, and the music is by Lakshmikant Pyarelal, and the words, the lyrics are written by Javed Akhtar.

0: Alright guys, that was a fun song, Tama Tama Loge Tama.
1: Ji haan, bahut acha fast paced dancing beat tha, dancing song tha.
0: It was a typical Bhappi Lahiri music song. And also very well sung by Anuradha Podwal.
1: Ji haan.
0: Listeners, we are coming towards the end of the show. Would like to remind you once again of our upcoming pledge drive, September 19th.
1: जी हाँ, तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बता रहे हैं कि हम हमारी जो प्लेज ड्राइव है, जो फंड रेजिंग है, जो इस रेडियो स्टेशन के लिए आपके जो चाहता और चहेता प्रोग्राम है, वो 19 सितंबर को है. तो उसकी डिटेल तो मनीषा बता दें अभी थोड़ी सी तो चलेगा, राइट? तो उस दिन आपको रेडियो स्टेशन में फ़ोन करना होगा, क्योंकि कई लोग डोनेट करने के लिए फ़ोन कर रहे होते हैं तो कई बार लाइन बिजी आती है. तो डोंट गिव अप, ट्राई अगेन. और उसमें स्टूडेंट आपका आपसे जो है आपका नाम, नंबर और पता भेजेगी, ताकि आपको जितना डोनेशन देंगे उसके लिए आपको फॉर्म भेज सकें. वो आप चेक मेल कर सकते हैं, उसमें बताएंगे और आपको किस जितना देंगे किस हिसाब से आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा. सो इट्स ऑन सेप्टेम्बर 19th.
0: All right, listeners, I'm counting on all of you to support Geetmala and support WVKR for year after year bringing on this show for you, started by Padma, and it's going on for more than 25 years now.
1: It's almost 29 or something, I would say.
0: All right, listeners, with that thought and that message, we like to end this show. We have our next host here waiting. We'll just play a song which she can then cut off, because it's almost one. We have 2 minutes while she's setting up. So in the meantime, I hope you guys have a good weekend. Have a happy Rakhi celebration with your family, and enjoy the good weather outside.
1: Ji haan, mausam badal raha hai. Bahut jaldi patjhad aayegi, sardi aayegi. And hum दोनों, मनीषा और मैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने लास्ट सैटरडे ऑफ अगस्त को, आखिरी शनिवार को, अपना कीमती वक्त हमारे साथ हमारे बिताया, हमारे गाने सुने. एंड वी अप्रिशिएट योर फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म. टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, खुदा हाफिज़.